बड़ा जुल्मी बादशाह सी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दित्ती जुल्म दी। हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाण लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रौ रीतां ते पाबंदी लगा दित्ती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब नूं एक गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपाण दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबा ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। हिंदुस्तान विचों मुगल राज दा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता। इतिहास गवाह है कि गुरु साहिबा दियां कुर्बानियां ने इस जुल्मी राज दा अंत कर दिता।

गुर अंगद की ते कुमारे गुरती जी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

0: हमारी जेबा एक रम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे
1: हर तुम बड़ अगम अथाह।

0: कलशम बेनती कृपा कलशम
1: बेनती शर बेनती बेनती हर कृपा कर
2: निधर निधर निधर

चंगा फिर जोगीराज, जरा ए दसो तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानू है, तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगीराज ने सामने देखिया ती संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे, भाई तेरी संदूकड़ी किथे? ते जोगी राज कहंदा है, गुरु साहिबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है? ते गुरु साहिब जी

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मिटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा तो देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक गल

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटिया दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां, गला विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े, ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गल्ली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खो लिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देण लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भज्जिया। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगदी ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन ओ कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोहना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इवें बयान करदे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

वीर साहब कहन लगे एहो जे संत चंगे नहीं लगते जेड़े डाला कहंदे ने टाणियां नूं पेड़ा दरख्त नूं गटकावे खा जाना कि जेड़े टाणियां समेत ही दरख्त नूं खा जांदे ने भाव के माया पिछे

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जा।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेकी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया ओ सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली गुआच गई है, किधरे तुसां देखी ता नहीं? ते नामदेव जी दूर बैठे हुए सन, ओ हस पए।

अपना वड्डा पण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे। उन्हां लोकां नूं कहण लगा, नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा का बुला आया, उस पेखी संत का आसन उड़िया ते थलों माया वाली वासली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन। जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मेरे गलों झगड़ा ला ले। है भाई मैं पखंड नहीं करदा, उस परमेश्वर दा नाम जपे है उदे नाल मिल गया। है भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तू

अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हो? साढ़े वास्ते मंग रहे हो, साढ़े वास्ते ही महान वड्डी दार शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे है। शुभ कर्मन से कम हूं ना करो, शुभ कर्म शुभ कर्म ही सबको बची है। बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है, निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए। विहार निर्मल होना चाहिए, परमार्थ का सदा ही निर्मल। जिसका विहार पवित्र है, विहार सच्चा से सच्चा हो गया, उसका जीवन विहार हो रहा है, दिखावा हो रहा है, वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन। तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा। शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी, दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म। तो अजकल भी बात चाहिए असं कलयुग जीवन के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हम, देह शिवा वर मोहे के है। ते ये भी कहते हैं कि कलयुग दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज अगे अरदास की। शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं, असली उसका नाम महादेव है। सतगुरु जी ने आप फरमाया है, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का कीनत में भेद। महादेव नु लोग शिव कहते हैं, वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो, रब की बंदगी करने वाला, लोग कहते भई ये तो रब रूप ही, क्यों रब नाल जुड़े। इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है, पर असल में शिव नाम अकाल पुरख। उस अकाल पुरख के अगे कलगी साहिब दे संदेश पिता जी ने अरदास की, वर मंगिया दे शिवा वर मुहे के है। कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े बार, तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्हों दुनिया जय जयकार हो। अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह, जिन्हां नूं फतेह हासिल होई, धर्म की धज खड़ी कर दिती। आखो श्री वाह, धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त, नाशवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं कीता। अमर वस्तु जो सी धर्म उसनू अपना है, जिदे कोल धर्म है उहदे कोल सब कुछ है। धर्म ही सब तों वड्डी दात, जिदे कोल धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल। धर्म धर्म नाल प्यार की इस नाशवंत शरीर नूं कुर्बान कर समझिया, इसने तो बिन सुना, इसने तो दिन

सिम सुत अखरे कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उतारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागे प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन होय सो भला प्रभ कह सिमरन सो फल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा प्रभ कह सिमरन तृष्णा बूझे प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन प्रवान प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दे आला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से परि पुकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कह सिमरन कारज पूरे प्रभ कह सिमरन कबु न चूरे प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी प्रभ कह सिमरन सहज समानी प्रभ कह सिमरन नेचल आसन प्रभ कह सिमरन कमल विगासन प्रभ कह सिमरन अनंत चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिन को प्रभ मेया नानक तिन जन सरनी पेया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना।

ओ लड़का पतंग उड़ांदा होया अपने साथियों दे नाल गल्लां भी करदा है, पर उहदा असली ध्यान अपनी डोर विच हुंदा है, किधरे पतंग आड़ ना जावे।

बालक पालन पौड़ी अले ओ मां बच्चे नु पंगोड़े विच पा के अंदर बार काम कर दी है पर ओदा असली ध्यान अपने बच्चे विच हुंदा है किधरे ओ रोवे ना।

इनू जिंदा कर दी ता मैं तेरे राम नू मन्ना। नामदेव जी अपनी बाणी विच इउं बयान कर

मैं ओदा पुत्र ही नहीं, पूंगड़ा पुत्र नुके है। ए मां तू कहनी नाम ना जाप, जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है। ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए,

तू हसदा खेडदा नहीं, बड़ा उदास रहने। जेड़ा नाम तेनू हसन खेडन नहीं देंदा, बेटा तू उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा। तां तां गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे, मां आखा जीवा।

मैं परमेश्वर दे कोल नू विछड़ के आया। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है। मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है, कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते ए मेरी नाम दी भुख मिट जा।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

हे प्रभु तेरे पैरां विच तीर मारन वाला ओ शिकारी भी तर गया, गनका भी तर गई, कुबजा मालन भी तर गई, मेरे ते भी नजरे अनायत कर। चरण बदक जन

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके।